जाए पुछहो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें ओए पहाने चलन अपने नित झूठ।

पौड़ी मनमुख मोह गुबार है दूजै पाए बोलै दूजै पाए सदा दुख है नित नीर विरोलै गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोलै अंतर प्रगास।

सुच संजम रवसस गहने दियों रे सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पियो रे निचार तार चुवै अत निर्मल इहे रस।

किलबिख खीन भय शांत आई हर उर धारियो वड भागा मनमुख रंग कुसुंब है कचुआ ज्यों कुसुम चार दिन चागा खिनमह बिन सजा।

हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड ले हो पौजल बिखम ते जन नानक सद बलिहार।

ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत हरे, तौ गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।

जहै दूजै भरम भुलाई हे। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

मन मुख दाजै पड़ पड़ पाही, अमृत नाम गुरु वडदाना, नाम जप हो सुख सारा है। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए, कंडा पाए न गड्डई मूले, जिस सतगुर

गुर बिन मूख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे।

नारायण देखै, अहनिस ज्योत निरंतर पेखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरै देखाया। सतगुरु मिलहो।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जुग जुग।

भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावै गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारा गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइये शब्द सुरत बिन आइये जाइये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।

आपे बख्शे देवड़ियाई गुरमत इहो मन पीजै हे। माया लहर शब्द निवारी इहो मन निर्मल हो मैं मारी।

ना गुरमुख हो गए सो सच कमावे साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई।

बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाईंदा। काया विच तोटा काया विच लाह, गुरमुख खोजे वे परवाह। गुरमुख बन

आनंदन गुण रव है दिन राती, आनंदन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा भाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आनंदन सदा

गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पभया। दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसह न आवै जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहु नानक बेअंत गुसाई।

पाक खर शराशरयत ले कम्मावहो त्रिकृत तर्क खोज टोलावहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रक्त गर्म मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का माल का चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाई लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग में ना

सच शाह अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनों तोलै भन्नण घड़न समर्थ है।

बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

गुरमुख जाता से जग मह काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी

खोई, बहले पेख पवह दिन राती, हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है।

बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग करता

रहाउ। आन दिन भगत करहै दिन राती, दुविधा शब्द खोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़ है।

यो अड़सठ सुरसरी हम मूर्ख को हर कृपा करी जन नानक तारे ओ तारण हरी पैरों महला चौथा सोकृत करनी सार जप माली हृदय फेर चल तुद नाली हर हर नाम जप हो बनवाली कर कृपा मिल हो सतसंगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़िए तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली।

रहाउ। तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना

रहाओ। काल युग में एक नाम उधार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुरु सेव।

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भव जल फेरा।

पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचय नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

चिंत हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यों पावे त्यों करहे निबेरा। द्वितीया नासत एक

ओडा कूप गोज खिनका ढै, जो ओडा कूप गोज खिनका ढै त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन

खेल तुझ महे समाहे। ज्यों पावै त्यों राख ले सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते। हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी घर आया। बसंत महला पंजवां हिंडोल।

मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुभानो बिखम माए नहे अस्थिर दिसै एक पाए ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझ ससाच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहा।

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरे तिनका सब

घूमऊ तिस अर्पऊ सब सुख जाई। एक निमुख प्रदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवाओं दिन रह नाई मान अभिमान हो।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

ਲਾਏ ਸੋ ਸਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਡਾਈ।

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

ताई नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु तूर दे हर पार लंघाई मलार महला चौथा तिस जान को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा।

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइय सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जां हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन ए प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जग तरावै रहाउ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अगे।

हों एक थिन तिस बिन रह न सकौं, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनका संग मोहे प्रभ चित आवै, संत प्रसाद मोहे जागी।

कन हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

दुख दालत सबो लह गया, जान नाओ गुरु हर दीता, सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत उपाय सबो बस कीता, सब सेव हो मोहनो।

ज्ञान दृढ़ाया बहकार बास जग दी जय। एक ज्योत एक गोमन वस्या सब ब्रह्म दृष्ट एक की जय। आत्म राम सब एक है पसरे

स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानक है। मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरदंत जरुआ।

नाम उरतहारं कुल है समूह सगल उदहारं बडभागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह न है।

ਕਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ।